0: Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of GoWise Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Client Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Danny from On The Go Eastgate for all mechanical requirements.
1: जी हाँ दोस्तों, आते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये गीत पसंद आया हुआ होगा। और चलो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास और भी एक सॉन्ग है आपको सुनाने के लिए। और आपको याद दिला दे कि हमारा जो KYC सेगमेंट है, नो योर कैंडिडेट, ये भी चल रहा है बिकॉज दिस इज द इलेक्शन ईयर। और वो भी आप देख सकते हो हमारे जलसा फिजी रेडियो फेसबुक पेज पे। तो इट्स ईजी, आप जलसा फिजी रेडियो फेसबुक पे जाओगे तो देखोगे। और अगर आप टिकटॉक का हो तो टिकटॉक पे भी हमारा जो जलसा फिजी रेडियो है वो भी आप जाकर देख सकते हो। उसमें भी हम कुछ वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं, एंड यू कैन हैव अ लुक ओवर देयर एज वेल। हम कहना चाहेंगे सभी जो कैंडिडेट्स है, यानी जो आते हैं आर्टिस्ट है, प्लेटफॉर्म पर आते हैं हमारे जलसा टैलेंट सीरीज में, उनको भी हम कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे फॉर द हार्ड वर्क। और लोग काफ़ी जो टाइम निकालते हैं, सीखते हैं, तब आकर जो अपना जो टैलेंट है वो दिखलाते हैं। सो इट इज़ क्वाइट नाइस टू सी दैट। और काफ़ी लोग काफ़ी सपोर्ट में भी आते हैं, हमारे जितने स्पॉन्सर्स हैं हम सबको शुक्रिया करना चाहेंगे और आपको भी करेंगे, क्योंकि आप भी हमें जो सुनते हो सपोर्ट करते हैं, एंड दैट गिव्स अस एन इंस्पिरेशन कि हम ये जो रेडियो है काफ़ी साल हो चुका है, आई थिंक इट्स मोर लाइक 12 or 13 ईयर्स, और विथ योर सपोर्ट वी आर स्टिल गोइंग। तो देखते हैं हमारे पास कौन सा नेक्स्ट सॉन्ग है।

0: Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of Govai's Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Klein Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Danny from On The Go Eastgate for all mechanical requirements. जी हाँ दोस्तों, साथी है जलसा फिजी रेडियो, मैं हूँ प्रेम रेटा विनेश और साहिल इज डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब टुडे प्लेइंग द सॉन्ग्स। और ये जो सॉन्ग आप सुन रहे थे, मुझे याद है कि ये जो मूवी आया था एंड देन द सॉन्ग वाज क्वाइट पॉपुलर, काफ़ी अच्छा सॉन्ग था, काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। लेकिन जो वर्जन अभी साहिल ने प्ले किया है, दैट इज मोर साउंडेड लाइक रिमिक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
1: जी हाँ, इट्स ऑल रिमिक्स, अभी जस्ती करके रिमिक्स, लाइक दे आई थिंक बॉलीवुड इज रन आउट ऑफ सॉन्ग्स। So they're bringing out old songs with remix.
0: Yeah, kafi aur kafi jo naye song bhi log gaate bhi hai, they just twist it around, but they bring those songs the, back in.
1: The background music is basically same hai.
0: सही बात है, एंड वी विल सी, बिकॉज आई थिंक सिंगर्स आर दे, ऐसा नहीं कि सिंगर्स नहीं है, वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सिंगर्स इन बॉलीवुड या इंडिया में अगर देखोगे, बिकॉज वी सी ऑल दिस इंडियन आइडल्स एंड ऑल सिंगर्स जो आते हैं बहुत अच्छी तरह गाते हैं। एक्चुअली सम आर वेरी, कहेंगे काफ़ी अच्छा लेवल के है, वेरी टैलेंटेड, लेकिन हमें सॉन्ग राइटर्स की ज़रूरत है ना, हु राइट सॉन्ग्स जो लिखते हैं, बिकॉज उस बोल पे फिर वो लोग गीत जो बनाते हैं, गीत गाते हैं। सो विल सी व्हाट हैपेंस, या तो फिर वी माइट हैव अ डिफरेंट, कहेंगे जॉनरे, या नॉट जॉनरे बट यू नो डिफरेंट वे ऑफ सॉन्ग।
1: आई थिंक द एडवांटेज इन ओल्डर डेज वाज बिकॉज उससे पहले गाना रहा नहीं ना, सो व्हाटएवर केम आउट वाज न्यू, and then a lot of song writers, they were poets, they were into poetry, so most of the songs actually came from poetry, not that they took the poetry leke uske fin they twisted it a little bit to
0: इंग्लिश में अगर देख लो, दोज वेर डेज व्हेन शेक्सपियर के डेज थे ना, सो एवरीथिंग वाज पोएटिक पोएट्री एंड इट वाज ऑल लाइक सेइंग थिंग्स डिफरेंटली, काफी डिफरेंट था। बट अगर अभी आप देखो तो काफी डिफरेंट हो गया है, एंड अगर आपको कोई आंसर चाहिए कुछ भी, हम सीधा AI करते, तो आई थिंक वो जो आपका खुद का जो इंस्पिरेशन है, जो टैलेंट है ना, वो ढलते जा रहा है, जस्ट बिकॉज वी आर मोर गेटिंग यूज टू द टेक्निकल स्टफ। और अभी मूवीज भी बनता है, आई थिंक दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग अ लॉट ऑन टेक्निकल,
1: I think side so, it's of more things. Of like high background or something. Yeah. And the other thing is, we do have a lot of singers, but usme se kitna singer actually gaana gaa jaane. It's mostly auto-tune or, you know, like even not just Bollywood, Hollywood mein bhi kitna singers hai. They, agar unka live sunoge without auto-tune, you won't like it. They cannot sing at all. But technology hai, toh technology turns their voice into something else.
0: Yeah, and with the introduction of AI, who knows, we might not even need those human singers.
1: No, because I think they do have, there are people who have done experiments, like I've seen it online, and you know, like

0: Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of Govice Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Klein Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Danny from On The Go Eastgate for all mechanical requirements.
1: जी हाँ दोस्तों, साथियों शुक्रिया करना चाहेंगे आप लोगों को हमारे साथ जुड़े हैं इतने देर से, और भी हम आप तक सॉन्ग्स पहुंचाने की कोशिश करेंगे. द सॉन्ग देयर वाज जस्ट प्ले टुडे आई मे हैव हेड बिफोर या पहले सुना बट मुझे याद नहीं, बट होप ये गीत भी आपको अच्छा लगा होगा. और चलो हम नेक्स्ट सॉन्ग पर पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो अभी विंटर चल रहा है, आई नो इट्स अ बिट कोल्ड एंड होप यू आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द विंटर. आई एम नॉट श्योर आप विंटर से लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हो. आई थिंक हीट पम्प इज द कोल्ड फॉर द डे. मैं भी अभी भी कुछ लोग यूज़ कर रहे होंगे जो फायर एट योर होम, बट आई थिंक मेजोरिटी अब हो चुका है हीट पम्प्स. और कॉस्ट ऑफ जो पावर देर इज नॉट गोइंग टू गो इलेक्ट्रिसिटी, तो इट इज़ कॉस्टली. देखते हैं कि आगे क्या होता है. एंड दिस टॉक अबाउट सोलर, बट आई नॉट रियली श्योर हम किस लेवल पे है और वेदर न्यूजीलैंड इज रेडी टू एम्ब्रेस या तो फिर सोलर इज रियली गोइंग टू वेक फॉर न्यूजीलैंड. साइल में वही सुन रहा था अबाउट सोलर कि इफ इवन इफ यू हैव दोज पैनल्स देन यू हैव टू रेगुलरली क्लीन इट.
2: You have to clean. डस्ट रहेगा तो फिर पावर नहीं जनरेट करेगा.
1: आई नो व्हेन आई वाज इन फिजी, अगर किसी के घर पे ना कोरगेटेड आयरन पे अगर आपको जाकर कुछ करना, इट वाज वेरी इजी नो फॉर अस. इट वाज अ स्टैंडर्ड थिंग, सिर्फ लेडा मिल जाए हम चढ़ के चले जाते थे. बट वही एक बार मैंने ट्राई किया था, आई हैव गॉट टाइल्ड रूफ बट आई गॉट अफ्रेड बिकॉज इट वाज क्वाइट जो टिल्टेड था. And I got afraid. मैंने बोला नहीं नहीं, only professionals should do that, otherwise I'll get hit. So I think that could be a difficulty for many people. आपको professionals से clean करना पड़ेगा.
2: Not really. Just how's it done? It's mainly dust.

Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of Govice Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Client Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Danny from On The Go Eastgate for all mechanical requirements. जी हाँ, अगर आपकी गाड़ी का कुछ तकलीफ दे रहा है देन डेनी ऑन द गो ईस्टगेट आप जा सकते हो. और ड्राइविंग लेसन अगर आपको चाहिए, जैसे कभी कभी होता है ना कि आपको आपका कोई चीनने वाला होगा या आपको ही लेना होगा ड्राइवर्स लाइसेंस, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू हैव अ फ्यू लेसन्स सो दैट व्हेन यू गो फॉर द एक्चुअल टेस्ट आसान रहेगा. अदरवाइज वो हैसल हो जाता ना, इफ़ यू फेल समथिंग एंड देन यू डोंट अंडरस्टैंड, फिर आपको फिर से जाना पड़ता है एंड इट जस्ट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम एज वेल. और Majestic Stays, there's some accommodation in the city, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. अभी हमारा जो वन स्टेडियम इज डूइंग प्रिटी गुड, फुल हाउस काइंड ऑफ चल रहा है. एंड जो इनकम प्रिडिक्ट हुआ था विद इन द कोटा, एक्चुअली आई थिंक थ्री शोज में उतना पैसा वापस आ गया थ्रू द वन स्टेडियम, तो विच इज़ डूइंग अ गुड जॉब फॉर द सिटी. बट ओवरऑल उतना ज़्यादा, आई मीन इट मे हैव हेल्प्ड अस but not maybe as much as we wanted because the rate is increasing by 7% or something. So every deduction may you will be paying some dollars extra and it is what it is. And there's other changes happening as well, jo dheere dheere aapko jo pata chale hi jayega. Abhi to thand chal rahi hai, winter chal rahi hai, so once again I hope you are keeping yourself warm. To chalo dekhte hain hamare paas kaun sa next song hai.

0: Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of Govai's Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Klein Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Danny from On The Go Eastgate for all mechanical requirements. जी हाँ दोस्तों, साथी होप कि यू आर एंजॉइंग द प्रोग्राम. वैसे हमारे पास बहुत समय तो नहीं बचा, विल सी हाउ मेनी सॉन्ग्स वी कैन प्ले बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट देयर. तो चलो हम जल्दी से एक सॉन्ग सुन लेते हैं, उसके बाद में वी विल सी हाउ मच मोर टाइम वी हैव आपसे अलविदा लेने के लिए.
1: पोपल के अनुसार ये पता चला है कि 50 करोड़ की रकम एक चटनी की गोनियों में छुपा कर एमजी गाड़ी में रखी गई. और मजे की बात ये है, ये कैश जिसे मिला वो पैसा

महसूस होती है, जल्द सा फिजी रेडियो और अब समय आ चुका है हमें अलविदा लेने के लिए। आशा करते हैं कि आपका समय अच्छी तरह बीता। शुभरात्रि, आप एंजॉय कीजिए दो, इट्स अ बिट कोल्ड और विंटर है कीपुम। तो चलो हम लास्ट सॉन्ग आपके लिए छोड़े जाते हैं इस वादे के साथ में, वी विल गेट इन टच अगेन, हम फिर जुड़ जाएंगे इसी तरह स्टूडियो में नेक्स्ट सैटरडे। और साथ साथ में हमारा जो वीडियोज़ है, KYC है और टैलेंट सीरीज है, ये चलता रहेगा। कीप सपोर्टिंग अस, जब भी मौका मिले देन जुड़ जाइए। तो चलो नेक्स्ट सॉन्ग फ्रॉम साहिल, बाय।